0: ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0303-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मखर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदा लिसनिंग टू कैलगरीज मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबरा 94.7
4: FM। टेक योर बिजनेस बियॉन्ड वॉल्स and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrong Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrong.ca or call 403-400-0203.
5: ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁੱਖ ਮੋੜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਈ
6: ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਵਾਦਤ ਆਡੀਓ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ

0: नहीं है। वेदांत के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने वेदांत की प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट शेयर किए। इसमें यहां तक आरोप लगा दिए गए कि वेदांत का अकाउंट पाकिस्तान से हैंडल हो रहा है। वेदांत को एंटी नेशनल तक कह दिया गया। इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, मोदी प्रधान की जोड़ी ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया। दशकों में पहली बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर इतने गंभीर सवाल उठे हैं। 18.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और एक हफ्ते से ओएसएम गलत मार्किंग और जांच की गड़बड़ियों की शिकायतें अनसुनी पड़ी हैं और शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। राहुल गांधी ने इसके साथ ही लिखा, एक 17 साल का बच्चा जिसकी कॉपी गलत जांची गई, न्याय की उम्मीद में सोशल मीडिया पर आया मगर उसे मदद नहीं गालियां मिली। बीजेपी के आईटी सेल ने उसे एंटी नेशनल कहा, सोरोस का एजेंट कहा, डीप स्टेट का हिस्सा कहा। एक 17 साल का बच्चा अपने भविष्य के लिए आवाज उठाता है और यह बीजेपी उसे देशद्रोही बना देती है। शिवसेना नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर लिखा, अभी अभी इस छात्र की परेशानी और सरकारी समर्थकों की टिप्पणियां पढ़ी, सोचिए उस छात्र का स्टेटस लेवल क्या होगा जो गंभीर गड़बड़ियों को साझा कर रहा है लेकिन उसका समर्थन करने के बजाय कुछ लोग उसे पाकिस्तानी कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो एक छात्र पर और मानसिक दबाव डाल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वे एक नाकाम शिक्षा मंत्री और उतने ही नाकाम अफसरों का बचाव करना चाहते हैं। वेदांत के एक्स अकाउंट के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें उसकी लोकेशन साउथ एशिया दिखाई गई है। इसी का जिक्र करते हुए 17 साल के वेदांत को कई लोगों ने पाकिस्तानी कहकर ट्रोल कर दिया। इसमें मीडिया जगत से जुड़े लोग तक शामिल थे। हालांकि वेदांत के भाई सिद्धांत श्रीवास्तव ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, ट्विटर में कुछ तकनीकी खराबी के कारण हम लोकेशन नहीं बदल पा रहे हैं। इस बारे में उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई से ये कहा,
1: वो ट्वीट वायरल जब हुआ तो कुछ और ही चीज हमें देखने को मिली। लोग बोलने लग गए कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा अकाउंट क्योंकि साउथ एशिया रीजन में आता है तो हम पाकिस्तानी बन गए। तो वो चीज वैसे तो मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा था कि चीज ये लोग क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जैसे मैंने भी पढ़ा है कि साउथ एशिया एक रीजन है जिसके अंदर इंडिया भी आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये सारे नेशंस आते हैं, कंट्रीज आती हैं। तो यही चीज मैंने उनको ट्विटर पे बताने की कोशिश करी। बट जब इतनी हैवी ट्रोलिंग हम फेस करने लग गए, बहुत बड़े बड़े लोग जो कि बहुत बड़े बड़े एंकर हैं उन्होंने भी इस चीज़ को बिना वेरीफाई करे कि साउथ एशिया आ रहा है तो सीधा सीधा पाकिस्तान से ही ट्वीट आ रहा होगा, उस चीज़ ने हमें बहुत आहत करा है, हमें बहुत बुरा लगा और उसकी वजह से वेदांत को भी बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा।
0: सीबीएसई बोर्ड में 12वीं क्लास के स्टूडेंट वेदांत श्रीवास्तव की फिजिक्स की आंसर शीट को लेकर
2: खबरें कुछ इस तरीके के नाल रुख बदल जाती हैं ते दूसरे पासे चली जाती हैं। सो प्रोग्राम च इसे तरीके ने गलबात नु जारी रखांगे, प्लस आपां अपनियां इनफॉरमेशन जड़ी है वो तुहाडे नाल शेयर करदे रहने हैं क्योंकि ये प्रोग्राम सबरंग रेडियो 94.7 एफएम ते तुसीं सुनदे हो मंडे ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे शाम नु 7 तों 8 ते संडे को लेकर 5 बजे तक। एक छोटा जा कमर्शियल मैसेज जिहड़ा वह सुन के ते फिर वापस मिलते हैं बाकी दियां खबरां ते गल्लां तां जिहड़ियां ने इस तों बाद तुहाडे नाल शेयर करदे हां। किधर किधर चल फिर आपां गल्लां जिहड़ियां जी करांगे इस छोटे जे कमर्शियल ब्रेक तों बाद।
3: आपां थोड़ा जा बिल्कुल जी विसाखी मेला कैलगरी हो गया हूँ विसाखी मेले तो मैं याद आ गया भी आप थोड़ा जा सारे स्पॉन्सर्स बारे थोड़ा जा जिक्र फिर तो कर दी है। विसाखी 13वां मेला सीगा जी जिहड़ा 16 मई नूं ऑर्गेनाइज किया गया जिहदे च राजेश मनु ते सिंबो कैनेडा ने मिल के इस प्रोग्राम नूं ऑर्गेनाइज करवाया। विसाखी मेले के मौके ते साडे डायमंड स्पॉन्सर ने ट्राइको होम्स वाले वालों वधिया ऑफर दी जा रही $20,000 तक की सेविंग तुसीं कर सकते फ्रंट गराज घर जिहड़े कि 6 लाख तों शुरू हुंदे आ ते लैंड होम जिहड़े कि 5 लाख 5.5 लाख तो शुरू हुंदे ते 10,000 तक तुसीं सेव कर सकते हो। trikohomes.com ते विजिट करके होर जानकारी लै सकते हो, बुक करो अपनी लोकेशन जिहड़ी विजिट है ब्रिजपोर्ट चेल्सिया ते कॉर्नर ब्रुक ते नाल बाय बाय सी होम केयर सर्विस जिन्हां दा वैसे मैं पहला हुणे काफी डिटेल दे विच गल कर चुका एक बारी फिर तो क्विकली गलबात कर दिंदे आ जिहड़े थोड़े स्पॉन्सर दे बारे। बाय बाय सी होम केयर सर्विस जिहड़े कि केयरिंग फॉर यू राइट एट होम तुहाडे घर च बैठे तुसीं मुफ्त जिहड़ियां ने सलाह मशवरे तों इलावा सेवावां भी लै सकदे हो क्योंकि ये तुहाडे घर आ के तुहानू सेवावां दिंदे ने। कंपेनियनशिप हो गया, मील प्रैप होगी, निजी देखभाल होगी, होस्पेस सर्विसिज हो गई, स्पोर्ट जिन्हें कहते हैं डिमेंशिया केयर, हाउसकीपिंग, लाइट ते ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पाइट केयर, नर्सिंग सर्विसिज, ये सारा कुछ तुहानू प्रोवाइड करदे ने। बाय बाय सी होम केयर सर्विसिज वालों का फोन नंबर 825-760-0983

0: तेरे वीरे लई मैं सुनिया जग्गी ढिल्लो पूरे प्रोफेशनल तरीके नाल समझांदे आ।
1: जी हाँ, मैक्सवेल सेंट्रल रियलिटी नाल काम कर दे जग्गी ढिल्लो नाल एक बार जरूर गल बात करो। जग्गी ढिल्लो दा फोन नंबर है 403-616-2445 403-616-2445।
2: ओहो, आज फेर नहीं लोड मिलिया।
3: की होया?
2: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे, ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नु फेर नहीं मिल होना दो दिन।
3: ओहो, रह गए ना फेर पिछे। मैं सुनिया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है, ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी जल्दी गाल करके कोई हल लब्बो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
4: हेलो गोपी, शुक्र है तू फोन चुक लिया। जिद्दण दा नवा घर लिया, सज्जन मित्र फोन चुकनो भी गए।
5: ओ सारे डरदे नहीं चकदे, उनां नूं लगदा तू मूविंग ली कहूंगा, कौन इन्ने भारे समान नूं हाथ पावे।
4: ओ नहीं भरावा, मैं इंज नहीं करदा। आपां ते हर वार स्टार मूविंग वालियां नूं एक फोन करीदा, ओ बहुत वधिया तरीके नाल सारे घर दा समान सही सलामत बिना किसी झंझट दे मूव कर जांदे आ।
6: अपने घर जां ऑफिस दा समान मूव कराउणा होवे तां स्टार मूविंग दे मलकीत सिंह जी नूं अज ही कॉल करो 4038701790 403-870-1790 स्टार मूविंग।
7: वेलकम बैक टू सलाम नमस्ते कैलरी ऑन रेडियो सुसंगम 94.7 एफएम। जी अभी मैं हूँ सलमा जी हैं। हम खाली बात कर लें कि जो हमारा शो अभी हुआ उस दिन, जो कि सैटरडे के दिन था, जो कि अपना वर्ल्ड पार्टनरशिप वॉक का फंड रेजिंग गाला था, तो मार्शल ऊपर वाले की दुआ से बहुत ही अच्छा गया। जी सलमा जी, क्या थोड़ी डिटेल में?
8: हाँ, मैं थोड़ा डिटेल में कहूंगी कि सबसे पहले तो जाहिर बात है कि बगैर आप लोगों के कोई प्रोग्राम भी नहीं सक्सेसफुल हो सकता, क्योंकि ऑडियंस होती है तो शो सक्सेसफुल होते हैं। तो उम्मीद है कि जो भी लोग वहाँ आए थे उनको अच्छा लगा होगा, और ये हमारी मेहनत होती है कि हम सब मिलकर बहुत अच्छे कॉज के लिए, जो ग्लोबल पॉवर्टी के लिए है, हम उसके लिए कुछ कर सकें। तो हमारा और दोनों का यही होता है, हमारे जो हेल्पर्स हैं, जो टिकट बेचते हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, जो भी हमको किसी तरीके भी स्पॉन्सरशिप देता है, हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे कॉज के लिए होता है और हम हर साल करते हैं। और उम्मीद है कि जो लोग आए थे उनको अच्छा लगा होगा, और एंड प्लीज स्प्रेड द वर्ड के ये हम अगले साल भी करेंगे कुछ और तरीके से, कुछ और डिफरेंट सिंगर्स के साथ, कुछ और हम लाएंगे इसमें, हर साल हम कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है आपको उसका इवेंट पसंद आया होगा, जैसे कि अभी हमारे वर्ल्ड पार्टनरशिप वॉक के टीम मेंबर्स आए थे। आप में से कोई भी जा सकता है वहाँ पे वॉक करने के लिए, आपको कोई कुछ वहाँ कह नहीं सकता कि आप कहाँ से, किधर से, कौन है, क्या है। दिस इज नथिंग टू डू विद दैट। आप लोग आइए, कोई भी वहाँ आकर वॉक कर सकता है। आप कुछ भी डोनेशन देना चाहें या आपकी मर्जी है, लेकिन आप आके एंजॉय करिए

0: 心誒運化那些惑嘅嘢人咧，都是嘢含啲阿啲做啲阿啲阿。हिस्सा हिस्सा होते हैं क्योंकि हर एक कोई पार्ट ले सकता है बाकी जो भी ऊपर से देना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है तो दिस इज हाउ इट इज डन सो प्लीज आप जो भी हैं कौन से भी बैकग्राउंड से कौन से भी कम्युनिटी से सब लोग आइए वॉक करिए एंजॉय करिए और सबके साथ मिलिए और देखिए कि कैसा है इतनी बड़ी तादाद में वहाँ लोग आते हैं 4 से 5 हज़ार लोग आते हैं वहाँ पे वॉक करने तो हमारा आपसे हमारी आपसे रिक्वेस्ट है तो इसी तरह आप हम लोग को सपोर्ट करते रहिए हमारे इवेंट को भी और वो भी एक पार्ट है वर्ल्ड पार्टनरशिप
1: बिल्कुल समझो हमारे जो जो इवेंट के हमारे

better sponsor to the Fingering Toyota and South Point Toyota, one of my good sponsors there, mega sponsor there, Gilman Construction, and powered by Watch Warehouse. So one of my good sponsors there, Casket Painting, Sultan Payment Hall, and Wajahat Heroes Realtor. और हमारे जो गिफ्ट सर्टिफिकेट्स और गिफ्ट जो हमारे रेफरटो के जो जो इनाम थे उसको स्पॉन्सर किया था मेम्स्टर्स ने ऑप्टिमा आईवेयर मिर्ची रेस्टोरेंट नॉर्थ ईस्ट

0: by Sohail Kashif or jo videography thi, it was by Aira Lara and she was in tears. Aayenge baal kaise lagate hain? Bahut acha, maine usko
1: bola. Achhi lag
0: rahi. So thank you so much everyone for your lovely, lovely support for our event. So let's enjoy some music. इसलिए हमारे पास next जो 20 minutes के लिए कोई guest नहीं है, तो हालांकि हमारे पास जो है
1: guest
0: आने वाले थे, उनको कोई family emergency से मिले, लेकिन आते उनका जो show होने जा रहा है, राहुल राय जो कि अपना लीड सिंगर है और एंड ही इज फेमस फॉर हिज सूफी सॉन्ग जो कि अपना 29 मई को होने जा रहा है एट राजगीर बैंक्वेट हॉल. टिकट्स आर ओनली $25.

0: उम्मीद है आपको ये गाना बहुत पसंद आया होगा ये वन ऑफ द एपिक सॉन्ग्स में आता है उस जमाने का गाना ये लेकिन बहुत प्यारा गाना था और इत्तेफाक है कि आज हम आप लोग के साथ गाने कुछ अच्छे अच्छे सुना रहे हैं क्योंकि हमारे गेस्ट जो आने वाले थे उनके यहाँ कोई इमरजेंसी हो गई तो नहीं आ सके तो हमें चले मौका मिल गया आपको कुछ अच्छे अच्छे गाने सुनाने का तो जलाल आप क्या सुना रहे हैं
1: तो है ना एक और अनाउंसमेंट है मैं जून की 13 तारीख को
0: जी
1: आशा भोसले के लिए जो है जो कि अपना ट्रिब्यूट हो रहा है फ्रॉम द लोकल बैंड हमारे कैलरी की बैंड है जिसमें जो सिंगर्स होंगे वो हैं जहीर जलाल निकिता देसाई एंड कविता जयराम और फिर परमिंदर मरवाहा विल बी द गेस्ट आर्टिस्ट और कीबोर्ड पे जो कि ऑर्गेनाइजर हैं फॉर द शो इट्स जे चौधरी अमरजीत राखड़ा विल बी देयर एज वेल और कांगो और प्लस इंशाल्लाह आई बी डूइंग ए एमसी ऑन दैट शो तो होपफुली आप आएंगे टिकट्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम जो 25, 35 and 50 Center.
0: It's a new Indo-Canadian center.
1: It's on 30 Avenue Northeast. Lekin jo hai, tickets are only 25, 35 and 50. You can call me at 587-899-4786. So I can get you some tickets. If you want a sponsor, you can call me as well. And get you your sponsorship as well. But it just jo hai, tribute to one and only Asha ji. Aur unke bahut se, unke sare gaane hit hai. बहुत मजा आएगा आई नो स्पेशली लाइव बैंड है तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग 25, 35 and $50 वीआईपी टिकट्स आर अवेलेबल तो यू कैन कॉल मी एंड यू कैन गेट योर टिकट तो लीजिए अगला गाना फ्रॉम द मूवी मन

0: What a beautiful song from the movie Man. आज का जो शो है इसको स्पॉन्सर किया है कंट्री टोयोटा. इनका फोन नंबर 4032901111. seatstoyota.com. You can visit their website or mobile mortgage specialist Rubina Kasim Ali 4038707069. Hamza Butt from Butt Kadahi Banquet Hall 5873520094. Nasim Jewelers Calgary 8259985000 and Eyes by Bashir. At 4037203937. So,
1: Manji, kal Eid hai? Yeah, ji, kal Eid hai. Sabko hum wish bhi karte hain. Aaj Hajj hai. Aur iske liye hum sab apne musalmanon ko Eid Mubarak kehna chahte hain.
0: Ji.
1: Kyunki kal Eid hai aur aaj jin jo log wahan Hajj ke liye pahunch sake hain unko bahut bahut Mubarak ho. Aur ye bahut badi Eid hoti hai. Isme Hajj aur ye saath hota hai sab kuch. तो जो लोग हज के लिए पहुंच सके उनका बहुत ही अच्छा है ये नियत है और उनकी इनका उनका हज कबूल हो और सब हमारे लिए भी दुआएं करिए आप लोग और कल का अच्छा दिन है आई नो इट्स अ वीक डे पिछली दफा की ईद वीकेंड पे आई थी तो बहुत सबको मजा आया था लेकिन जो लोग आधा दिन ऑफ ले लेते हैं नमाज पढ़ने के लिए तो इट्स गुड और बाकी शामें तो आप अपने फैमिली के साथ गुजार सकते हैं ये तो चलता रहेगा संडे तक बिकॉज़ ईद के तीन दिन कहते हैं तीन दिन तक ईद मनाओ तो

0: तो अपना वन ऑफ माय जो है फेवरेट सॉन्ग दिल का रिश्ता फ्रॉम द मूवी दिल का रिश्ता. तो ये है अपना आज आखिरी गाना. आई विल स्टार्ट इन अ सेकेंड. खाली अभी जो है मैंने पॉज किया. तो आप सबको एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं. इंशाल्लाह मैं कल मिलूंगा फॉर द नेक्स्ट एडिशन ऑफ द कॉफी जलाल. और वी गोना हैव सम लाइव म्यूजिक. सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस. लाइव म्यूजिक टुमारो इज गोना बी कीबोर्ड एंड लिटिल बिट जो है तबला एंड एवरीथिंग. तो वील हैव सम लाइव म्यूजिक. इसलिए जो आशा जी का जो शो आ रहा है उसका प्रमोशन है. सो वील हैव लॉट्स ऑफ फन टुमारो. सो मेक श्योर टू जॉइन अस एट 8 PM.
1: जी सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक फिर से. और अच्छा उम्मीद है.

आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा अब हमें इजाजत दीजिए हमारा टाइम खत्म हुआ जाता है अगले हफ्ते मैं नहीं होंगी बिकॉज़ मैं टोरंटो जा रही हूं अपने बच्चों से मिलने तो इंशाल्लाह आपसे फॉलोइंग ट्यूसडे को फिर मुलाकात होगी तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंजॉय करिए वर्ल्ड पार्टनरशिप वॉक को मत भूलिए वो संडे को है प्रिंसेस आइलैंड पार्क पर 10:30 बजे थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफिज़

ज्यादा नहीं है बारिश, हल्की है, लेकिन कल भी इस तरह के बारिश की संभावना दसी गई है। तो एक तो लैके तीन या चार मिलीमीटर तक बारिश भी हो सकती है। कल दिन वेले 25 तो 28 डिग्री सैलसीयस टैंपरेचर होगा, उस तो बाद भी 28 डिग्री जो शुक्रवार को धुप निकली रहेगी, तो शनिचरवार को 17 डिग्री तो बारिश वाला माहौल, तो वीकेंड से भी हल्की फुल्की बारिश का इमकान जड़ा है जी वह बनया हुआ है। अज के प्रोग्राम के जिहड़ियां खबरां ते असीं चर्चा करनी है मौसम के हवाले नाल थोड़ी जी इनफॉर्मेशन देवांगे कि हीट वार्निंग किस किस जगह ते है। इबोला वायरस अफ्रीका दे विच किथे किथे किन्ना फैलिया ते बाकी मुल्कां वल्लों की चाराजोईयां कीतियां जा रहियां ने उहदे बारे गल्लबात करांगे। भारत दे नाल कनेडा सरकार वल्लों वड्डे समझौते वपारक समझौते हो रहे ने, ते उधरों चीन दे विदेश मंत्री भी कैनेडा दे विच आ गए ने, ते इत्थे भी इस पासे वालों भी ट्रेड दी गल कीती जा रही है। एक रिपोर्ट दे विच पता लगता है कि कैनेडा दे शहर हौली हौली अमरीका दे उपर अपनी डिपेंडेंसी घटा रहे ने, ते अपने सिर खुद होर के होरना पासियां वालों ध्यान करके अपना बिजनेस अगे तो रहे ने। किहड़े किहड़े शहर जिहड़े ने इस पासे वालों ज़्यादा कदम पुट रहे ने इहदे बारे गलबात करांगे समेत अपने शहर की कैलगरी शहर की। कनेडा वालों अमरीकन कंपीटीटर की जगह पर स्वीडन तो एक एयर सर्वेलेंस सिस्टम खरीदने पर विचार कीतियां जा रही ने। वो सर्वेलेंस सिस्टम की है ते अमरीका वाले इसका की सोचणगे इहदे बारे गल करांगे। दूसरे पासे जर्मनी दे नाल कुछ समझौता चल रहा पनडुब्बियां दे तहत, पनडुब्बियां दा जो बिड प्रोमिस है उस दे तहत कैनेडा दे विच वड्डा इकोनॉमिक बूस्ट देण दी गल कीती गई है, ते 10,000 तो वध जॉबां पैदा होणगियां अजिहा वादा कीता जा रहा है। जर्मनी दे नाल ज़्यादा संबंध मजबूत किए जा रहे हैं। इधरों फैडरल एनर्जी मिनिस्टर ने जानकारी दी है कि कैनेडा का पहला लिक्विफाइड नैचुरल गैस सप्लाई का एग्रीमेंट जर्मनी के नाल सिरे चढ़ गया है, तो समझौता हो गया। कैनेडा दे विच वायलेंट क्राइम जड़ा है वह रूरल खेत्र दे विच दुगनी रफ्तार नाल कैनेडा दे विच वध रहा है। अर्बन एरियाज़ दे नालों शहरी खेतरां दे नालों पेंडू खेतरां विच ज़्यादा है। ओंटेरियो विच गड्डियां चोरी करन वाले ग्रोह दे समेत समान बहुत सारे लोगों नूं काबू किया गया, तो वड्डे नुकसान इस चोरी दे ग्रोह ने कनेडा दे विच कीते, इहदे बारे गलबात करांगे। कैनेडियन लोग AI तो मैडिकल एडवाइस लै रहे ने पर इंसाना की जगह पर इसनों नहीं देख रहे अजे। ग्लोबल रिसेशन दुनिया भर के मदवाड़े के बदल छा रहे ने, पर अलबर्टा की वक्वादी मूवमेंट इस विच की योगदान पा रही है इस बारे गलबात करेंगे। कुछ दिन पहला उत्तरी सस्कैचुन दे विच एक रिछ द्वारा फेटल बेयर अटैक दे विच मारे गए व्यक्ति की पछाण हुई है। भारतीय मूल का यह एक MMA का फाइटर जड़ा है जी नौजवान यह मारिया गया 27 साल का केरला वासी, ये बारे गलबात करेंगे। कुछ खबर होर ने जिदे विच मार्केट पर भी चर्चा करेंगे। ते साबका US अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी उन्होंने कैंसर डायग्नोज किया गया, ये बारे गलबात करेंगे कि ये की कहानी है। ये साढ़े अज के प्रोग्राम के जिहड़ियां असीं खबर डिस्कस करनियां ने। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से दे विच असीं एक गलबात पेश करनी है डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग होरां दे नाल, ते चर्चा करांगे

कि जो एस आई आर है जो वोटां कट्टण दा काम पंजाब दे विच चलना बाकी सूबियां तों बाद उसका की रौला है ये ते उन्हां दे विचार जाने जाण के ये प्रोग्राम के दूसरे हिस्से विच आप जी लई पेश करांगे। लेकिन फिर मैं याद करा देवां कि अज दे प्रोग्राम दे विच सवाल जवाब भी नहीं होगा ते कॉलां नहीं लिया जाणगे, इस वास्ते माफी चाहते हैं जी। अज के प्रोग्राम दे विच असीं इह सारियां खबरां दे नाल कुछ विश्व दियां कुछ होर खबरां नूं छोण दा यतन भी है कि इस दे नाल जो मिडल ईस्ट दे विच स्थिति है कि ईरान दे नाल की चल रहा है इहदे बारे गलबात करांगे। हुण तक की अपडेट है अज के प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं सोनिक इंश्योरेंस के मानस पहुजा अलबर्टा में ट्रकों की इंश्योरेंस के अगर तुम बेस्ट रेट लेने ने तो 587-832-1208 से फोन कर लो 587-832-1208 सोनिक इंश्योरेंस के मानस पहुजा। वाई वाई सी होम केयर तो वीरपाल कौर होर की कंपनी घर में बजुर्गों की सामभ संभाल सेवावां दिंदी है, बिल सीधा सरकार को भेजती है तो 825-760-0983 ते तुसी कॉल कर लो। वाई वाई सी होम केयर तो वीरपाल कौर होर की कंपनी है जी, घर दे विच बजुर्गों की सामभ संभाल दी सेवावां इन्हां कोलों लो ते बिल सरकार नूं। मर्सिडीज बेंज कंट्री हेल्थ कैनेडा की सब तो वड्डी डीलरशिप नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे विच है ते तुसी इस डीलरशिप तो गुड डील लैण लई गौरव शर्मा होर नाल कॉन्टैक्ट कर लो 403-903-6757। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिद्धू ते लवप्रीत सिद्धू जो कि लाइफ इंश्योरेंस ते सुपरविजर इंश्योरेंस करते हैं, फोन नंबर है 403-404-3500-403-404-3500 इन्हां नाल संपर्क कर सकते हो भरोसेयोग सेवावां लई। याद रखो पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिद्धू ते लवप्रीत सिद्धू। मदर इंडिया रेस्टोरेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी के सिटीस्केप लैंडिंग रेस्टोरेंट है जी, देसी घ्यो दालां सब्जियां बनाउंदे ने, 24 घंटे खुला रहिंदा है, 403-464-6666 इन्हां दा फोन नंबर है। केटरिंग करवानी होवे परिवार दे नाल बैठ के खाना होवे वैज नॉन वैज फूड बहुत वधिया सर्विस मदर इंडिया रेस्टोरेंट 24 घंटे खुलदा है सिटीस्केप लैंडिंग 403-464-6666। पिक्सल फोटो स्टूडियो नॉर्थ ईस्ट कैलगरी के सवाना बाजार विच यह स्टूडियो है जिथे सिर्फ $7 के पासपोर्ट फोटो तुसी बनवा सकते हो, नाल ही तुसी इन्हां कोलों बिजनेस हैडशॉट्स फैमिली फोटो करवानी होवे फैमिली पोर्ट्रेट ते बच्चों दी फोटो सब कुछ वधिया तरीके नाल करके देणगे, फोटो प्रिंट भी कर दिंदे ने पुरानियां फोटोआं नूं वधिया भी बना दिंदे ने। पिक्सल फोटो स्टूडियो सवाना बाजार नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, फोन नंबर 403-947-0060 403-947-0060। और प्रोग्राम दे विच असीं चर्चा शुरू करते हैं कि सब तो पहला मौसम की गल कर लीए जी, मौसम का हाल कैलगरी शहर का तो असीं आप जी नाल सांझा कर चुके हैं, पर एनवायरमेंट कैनेडा ने हीट वार्निंग जारी की है जिस विच अलबर्टा ते सस्कैचून के कई हिस्से आउंदे ने। कैलगरी दे इस विच कोई खास हिस्सा नहीं है, बिल्कुल ये कह लो कि कैलगरी दे बिल्कुल ईस्ट वल दा जिहड़ा एरिया है जां रेडियर जां एडमंटन दे ईस्ट वल दा जो सस्कैटून दे नाल लगता बॉर्डर है इस खेतर दा ते कुछ होर जिहड़े हैगे ने इत्थे येलो वार्निंग जिहड़ियां ने दित्तियां गईयां ने हीट वार्निंग दीयां ते इहदे विच इह कहा गया कि 30-35 डिग्री तक टैंपरेचर जिहड़ा जा सकता है। एनवायरमेंट कैनेडा ने येलो हीट वार्निंग दिती है ते दक्षणी सस्कैचून दा एरिया इस विच आउंदा है ज़्यादा। नैशनल वैदर एजेंसी ने कहा कि यह वार्निंग अगले 4 दिन तक रहेगी ते कई खेतरां दे विच टैंपरेचर जिवें कि मेडिसिन हैट रजाइना सस्कैटून वगैरह इत्थे 30 डिग्री तो प्लस होवेगा। कैलगरी एडमिंटन रेडियर ते लैथब्रिज जिहड़े अलबर्टा दे इह चार वड्डे शहर ने इस इह जिवें इन्हां नाल इक हीट दी इक वेव है इस तों बाहर रहिण दी उन्हां दी संभावना ते 30 डिग्री तों घट ही टैंपरेचर रहेगा 20-30 दे इन बिटवीन होने की संभावना जे असी यह कह लिए कि जो ज्यों ज्यों असी ईस्ट वालों जावे तो वार्निंग ज़्यादा होगी। एक्सट्रीम हीट वार्निंग भी कई जगह पर दी गई है लेकिन रजाइना दे विच 36-35 डिग्री तक टैंपरेचर जा सकता है जहाँ अनुमान मिथ्या गया है। कैलगरी

0: हर समय तुहाडे संग तुहाडा अपना यह रेडियो सुरसंगम।
1: ओहो आज फेर नहीं लोड मिलिया
2: की होया
1: बस पूछना इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है ते बच्चियां नु फेर नहीं मिल होना दो दिन
2: ओहो रह गए ना फेर पीछे मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी जल्दी गाल करके कोई हल लब्बो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001